संत ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत सेना महाराज की ये भक्ति रचना, जिसे गाया है जयश्री सबनीस ने।

जय श्री स्वप्निस के स्वर में संत सेना महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई रचित ये हिंदी भक्ति रचना, जिसे गाया है श्री गिरी।

संत मीराबाई रचित ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसे गाया था श्री गिरीश ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग भैरव पर धमार सुनवाएंगे. कलाकार हैं अशोकाधर नंदी. आपके साथ पखवास पर हैं तापस दास. तो लीजिए प्रस्तुत है राग भैरव पर धमार. कलाकार हैं अशोकाधर नंदी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Dhamar in the Rag Bhairav. Our artist is Ashokadhar Nandi. Accompanying our artist on the Pahavaj is Taposh Das. Listen now to Dhamar in the Rag Bhairav. Our artist Ashokadhar Nandi.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरव पर धमार सुन रहे थे। कलाकार थी अशोका धरनंदी। आपके साथ पखवाज पर थे तापस दास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी आपके सामने प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी पर सरूद वादन। कलाकार हैं भवानी शंकर दास गुप्ता। आपके साथ तबले पर हैं पार्थ प्रतिम दास। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी पर सरोद वादन। कलाकार हैं भवानी शंकर दास गुप्ता।
1: यू आर लिसनिंग टू धमार इन द राग भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज अशोका धौर नंदी। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द पखावज वॉज तापोष दास। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the concert, we now present a sarod recital. Listen to a sarod recital in the rag Basant Mukhari. Our artist is Bhavani Shankar Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla is Partho Pratim Das. Listen now to the sarod in the rag Basant Mukhari. Our artist Bhavani Shankar Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बसंत मुखारी पर सरोदवादन सुन रहे थे। कलाकार थे भवानी शंकर दास गुप्ता, आपके साथ तबले पर थे पार्थ प्रतिम दास। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Basant Mukhari. Our artist was Bhavani Shankar Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla was Partho Pratim Das. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित दिनकर कैकिनी का गायन. राग है सावणी केदार. विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं तुम हो प्रवीण. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं सोलह हो सिंगार किए सखी सजनी. In the program of Indian classical music, we present a vocal recital by Pandit Dinkar Kakani. Raag is Savani Kedar. Vilambit composition is set to Tilwara Tal and Drut composition in Teen Tal.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग सावणी केदार। आपके साथ तबले पर संगत की पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर अनंत केमकर ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग पूर्वी कल्याण। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं मिलन भयो है। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं धन धन भाग जागे।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग सावनी केदार बाय पंडित दिनकर कैकिनी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय अनंत केमकर। एंड नाउ वी प्रेजेंट राग पूर्वी कल्याण बाय पंडित दिनकर कैकिनी। विलंबित एंड द्रुत कॉम्पोजिशंस आर सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिणी का गायन। आपके साथ तबले पर संगत की दीपक नेरुरकर ने और हारमोनियम पर बबन मांजरेकर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू वर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय पंडित दिनकर कैकिणी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय दीपक नेरुरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय बबन मांजरेकर। This was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कल नाही पावे, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने, और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार, इन विच ही विल प्रेजेंट अ बड़ा ख्याल set to vilambit ektal. The lyrics are kala nahi pave. This will be followed by a chota khayal set to drut teen tal. The lyrics are din gaye beet sukh ke. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Samarjeet Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गा राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घूंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद राग बिलास खानी तोड़ी इन विच ही पेंस द बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल। द लिरिक्स आर नीके घूंघरिया, दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू विलंबित तीन ताल। द लिरिक्स आर नीके नीके शोभा देखत।

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चैटर्जी एंड द हारमोनियम बाय श्री समरजीत रॉय। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत.
2: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर का ध्रुपद धमार गायन. आइए सुने राग मुल्तानी में ध्रुपद. बोल हैं बंसीधर पिनाकधर.
1: दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक.
2: इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग ध्रुपद धमार रिसाइटल बाय उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर. लिसन राग मुल्तानी इन विच यू लिसन ध्रुपद. बोल बंसीधर पिनाकधर.

0: ये था राग मुल्तानी में ध्रुपद। पखावज पर आपके साथ संगत कर रहे हैं पंडित अर्जुन शेजवार।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग देश में धमार। बोल हैं सांवरे रंग डार दियो। दैट वाज राग मुल्तानी।
1: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
0: You are listening Dhrupad Dhamar recital by Ustad Nasir Aminuddin Dagar, accompanying him on Pakhavaj, Pandit Arjun Shezwar. In continuation of program, Ustad Nasir Aminuddin Dagar presenting Raag Des, in which you listen Dhamar, Bol, Saunre Rang, Dar Diyo.

0: ये था राग देश में धमार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर का ध्रुपद धमार गायन। पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित अर्जुन शेजवार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग देश। With that, we conclude Dhrupad Dhamar recital by Ustad Nasir Aminuddin Dagar, accompanied him on Pakhavaj, Pandit Arjun Shezwar. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel, Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग माल कौंस पर सितार वादन सुनवाएंगे. कलाकार हैं सौभिक लाहिड़ी. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार. तो लीजिए प्रस्तुत है राग माल कौंस पर सितार वादन. कलाकार हैं सौभिक लाहिड़ी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani instrumental recital followed by Hindustani vocal recital. Listen first to a sitar recital in the rag Mal Kaus. Our artist is Shobhik Lahiri. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Sarkar. Listen now to the sitar in the rag Mal Kaus. Our artist Shobhik Lahiri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सबसे पहले प्रस्तुत है मिस्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिस्र पीलू ठुमरी। कलाकार हैं पापिया सेन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अशोक राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है मिस्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिस्र पीलू ठुमरी। कलाकार हैं पापिया सेन।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Malkons. Our artist was Shobhik Lahiri. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to Mishra Tilak Kamod Thumri followed by Mishra Pilu Thumri. Our artist is Papia Sen.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आप सर्वप्रथम मिश्र तिलक कमोद ठुमरी, तदुपरांत मिश्र पीलू ठुमरी, उसके उपरांत मिश्र पहाड़ी दादर सुन रहे थे। कलाकार थी पापिया सेन।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं डॉक्टर शरयू कालेकर का गाया राग रामकली में ख्याल. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं ऐ सुन लीजिए बीरन पथिकवा. दुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं अंग अंग अलसाने लाडली.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे राग रामकली, और आइए अब सुनते हैं डॉक्टर शर्यू कालेकर का गाया राग शिवमत भैरव में ख्याल। विलंबित एक ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं सदा शिव शंकर, द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं दीन दुनी के राखन हारे।

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH पर हरदम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित गिरिराज. राग है बसंत मुखारी. इसमें आप आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें सुनेंगे तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द कंपनीइंग आर्टिस्ट इज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार पंडित गिरिराज। ये है रागम डीटीएच पर हर दम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें होंगी तीन ताल में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to हिंदुस्तानी सितार recital by पंडित गिरिराज। This is रागम 24/7 DTH anytime Indian music। Continuing the concert, now the artist renders राग रागेश्री।

ये था राग रागेश्री। आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रौनिया। हर दम हर समय डीटीएच रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द कंपनिंग आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is RUM 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संदूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विद हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग भूपेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय अभय रुस्तम सोपोरी। ही वॉज अकंपनीड तबला बाय उस्ताद अकरम खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

துக நிருபம சுபமாய வந்தே மாதரம்.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन और श्यामा संगीत. आज के कलाकार हैं आनंदिता सरकार, अनिरुद्ध नाथ, अनुराधा चक्रवर्ती और तिमिर घोष. कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीरा के इस भजन से जिसे गाया है आनंदिता सरकार ने. तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन, कलाकार आनंदिता सरकार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This evening we present devotional songs. We begin the program with a Meera Bhajan. Our artist is Anindita Sarkar.

0: अभी आप मीरा का ये भजन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी आनंदिता सरकार। आइए अब आपको सुनवाते हैं मीरा का ही एक और भजन। कलाकार हैं अनिरुद्ध नाथ। तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन अनिरुद्ध नाथ की आवाज में।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज आनंदिता सरकार। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Listen now to a Meera Bhajan by our artist Aniruddha Nath.

0: लीजिए प्रस्तुत है एक और भजन, कलाकार हैं अनुराधा चक्रवर्ती।
1: यू आर लिसनिंग टू मीरा भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनिरुद्ध नाथ। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इन द म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती।

0: हिंदुस्तानी संगीत के तहत अभी आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं तिमिर घोष।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत। Listen now to Shama Sangeet by our artist Timir Ghosh.